0: लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी, मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के लाइव अपडेट्स ऑन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। और आज के दिन की शुरुआत एक शानदार गोल्ड के साथ हुई है, वो भी एक ऐतिहासिक गोल्ड के साथ दोस्तों। दिस केम इन द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी, जहाँ वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम क्रिएटेड हिस्ट्री एट द एशियन गेम्स, विनिंग गोल्ड इन द वुमेन्स रिकर्व टीम इवेंट आफ्टर डिफीटिंग द ह्यूज जायंट साउथ कोरिया इन अ थ्रिलिंग फाइनल। वी ऑल्सो सॉ कुमकुम मोहम्मद वॉज द स्टार ऑफ द फाइनल, शोइंग remarkable composure under pressure. The 17-year-old repeatedly delivered crucial tens when India needed them most, including the decisive shot that sealed the gold medal. Ankita Bhagat provided valuable experience and consistency, while Kirti had moments of pressure during the final, but India's collective effort proved decisive when this was the first time in history that India ever reached the final of this event. Anupam.
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जैसा कंपाउंड आर्चरी में किया था, वैसे ही आज रिकर्व में भी हो रहा है। रिकर्व थोड़ा ट्रेडिशनल फॉर्म है और आप तो बता ही चुकी हैं, स्वर्ण पदक आ गया और एक और स्वर्ण पदक पर पूरी निगाहें हैं। यह है मिक्स्ड इवेंट, जिसमें आज भारत की टीम ने बहुत ज़बरदस्त खेला, सेमीफाइनल में जापान को 5-3 के स्कोर से हराया और इसी वक्त चल रहा है उसका फाइनल और इसमें पीछे है भारत चीन से और ये बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। और बल्कि इसमें सारे शूट्स हो चुके हैं, सारे तीर मारे जा चुके हैं और लगता है भारत इसमें अब पीछे रह गया है। 2-4 से पहले पीछे था और अब 3-5 से पीछे हो गया है, यानी रजत पदक, फिर भी एक स्वर्ण पदक एक रजत पदक, और इसके अलावा अभी मेंस टीम तो बाकी है।
0: करेक्ट एंड कमेंडेबल स्टार्ट टू द डे। इनफैक्ट भारत के एंगल से रग्बी सेवंस के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। इंडिया प्रोड्यूस्ड अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस टू डिफीट मलेशिया 26-5 इन द वुमेन्स रग्बी सेवंस पूल ई मैच एट द एशियन गेम्स। भूमिका शुक्ला स्कोर 3 ट्राइज, वाइल टूडू संध्या रानी

0: and Kumari Aarti also crossed the line as India secured a comfortable victory over Malaysia.
1: बिल्कुल, और अब हम इसके रिजल्ट को थोड़ा सा आपको और भी बता सकते हैं. इसमें धीरज देव बुमराह जो विश्व में नंबर एक की पदवी रखते हैं वो थे, और साथ में कुमकुम महोत थी. बहुत लड़ाई की, बहुत अच्छी लड़ाई की, और हम कहेंगे सेमीफाइनल तक पहुंचना, और फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है. तो एक स्वर्ण पदक और दूसरा रजत पदक. इसके अलावा कुश्ती में हम बात करते हैं. कुश्ती में आज बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई है. फ्री स्टाइल के मुकाबले थे, भारत के चार पहलवान थे. सबसे पहले प्रिया 60 किलोग्राम में कजाक की काइजी मेडट से हार गई, और ये चित होकर हारी, यानी कि विक्ट्री बाई फॉल मिली मेडट को. और 50 किलोग्राम में दीपांशी वो जापान की यूई सुशाकी के विरुद्ध थी, और ये भी टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर यूई ने मुकाबला जीत लिया. और इसके बाद 125 किलोग्राम में रजत राहुल, ये कुश्ती ज़रूर थोड़ा सा उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वो हार बैठे मुकाबला पॉइंट्स अंकों के आधार पर. लेकिन 65 किलोग्राम में जिस पर सबसे अधिक उम्मीदें थी, सुजीत, उन्होंने अफगानिस्तान के उमर सैयद को टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर परास्त किया, और इस समय उनका मुकाबला चल रहा है ईरान के अब्बास इब्राहिम के साथ, और ये पहला राउंड है, और देखते हैं इसमें क्या होता है. बस इसकी शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में.
0: राइट, गुड न्यूज़. वन गुड न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग. नाउ लुक, लेट्स हैव अ लुक एट वॉलीबॉल आल्सो. इंडिया डिफीटेड साउथ कोरिया 3-1 इन द मेंस वॉलीबॉल 5th-8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच. इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23. इंडिया देन क्लोज्ड आउट द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23.
1: बिल्कुल, और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर आई है. वॉलीबॉल में भारत ने अपने पूल में सारे मैच जीते थे. भारत वॉलीबॉल में एक अच्छी टीम है. हालांकि 3 कांस्य पदक आते रहे, लेकिन इधर करीब पिछले 20 साल से कोई पदक नहीं आया है. और अब वो हार गए थे उसके पश्चात पाकिस्तान से, और अब वो 5वें से 8वें स्थान के लिए क्लासिफिकेशन मैच खेल रहे हैं, जिसमें से पहला मैच उन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-0 से यानी लगातार सेट्स में हरा दिया है. अब 5वें और 6ठे स्थान के लिए उनकी लड़ाई होगी, अगला मैच होगा.
0: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट वेयर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड Sheetal Verma moving up to third place after China, who were disqualified from 2 races. India had initially finished 4th at the end of all races, but the subsequent disqualifications altered the standings and elevated the Indian pair to the podium. So huge congratulations to the women's skiff event team also.
1: बिल्कुल, समय कम है, लेकिन इतना बता दें सबको इंतजार है आज हॉकी का, जिसमें भारतीय लड़कियां स्वर्ण पदक पर निशाना साधेंगी. चीन के विरुद्ध मैच होगा. इसके अलावा बॉक्सिंग में 3 फाइनल्स हैं, तो हमारी अपडेट्स के साथ बने रहिए.
0: जी, और जाने से पहले आपको यह भी बता दें कि आज भारत की पोजीशन क्या है दिन की शुरुआत पे ऑन द मेडल टेबल, बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ इंडिया हैज मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द 7th स्पॉट. जी हाँ, 7वें स्थान पर अब भारत आ चुका है. कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 67 मेडल्स हैं, जिसमें 11 गोल्ड, 23 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज है. ऑल थैंक्स टू द फैक्ट दैट आज शूटिंग ने सुबह सुबह हमें एक और गोल्ड दिला दिया. और आपको बता दें, सिर्फ शूटिंग, सॉरी, यस, आर्चरी ने हमें एक और गोल्ड दिला दिया. और आपको बता दें कि आर्चरी में इसके साथ अब 4 गोल्ड हो चुके हैं और 1 ब्रॉन्ज, विच मेक्स इट 5 मेडल्स. और शूटिंग की अगर हम बात करें तो 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 15 मेडल. यानी सुबह सुबह जो आर्चरी ने हमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर दिलाया है, उसकी बदौलत भारत अब 8वें स्थान से 7वें स्थान पर आ चुका है मेडल टेबल पर. और हमारे टोटल मेडल्स भी फिलहाल अब 67 हो चुके हैं, विच इंक्लूड्स 11 गोल्ड. होपिंग दैट द डे टर्न्स आउट इवन मोर बेटर फॉर इंडिया. दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. विल join you back at 10:30 a.m. with the live updates of the ongoing Asian Games 2026.
2: நேரம் 9:36 நிமிடம். ஆகாஷ்வாணி மதுரை பண்பலை 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி ஸ்ரீ சரவணா ஜுவல்லரி வழங்கும் கர்ம வீரர் காமராசர் நினைவு தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி.
3: புன்னகையுடன் பொன்னகைகள் வாங்கிட ஸ்ரீ சரவணா ஜுவல்லரி, தொண்டி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ளம் கவர்ந்த நகைக்கடை. தங்க நகை சிறு சேமிப்பு திட்டத்தில் சேர்ந்து பயனடையவும். சரவணா ஜுவல்லர்ஸ், No. 3/1 வடுகன் தெரு, GH எதிரில் தொண்டி. செல் 9842134684.
2: கருப்பு காந்தி காமராசர் சிறப்புரை, எழுதியவர் ஏ சரோஜா தேவி அவர்கள். கேட்கவிருக்கும் இந்நிகழ்ச்சியினை வழங்குவோர்
3: புன்னகையுடன் பொன்னகைகள் வாங்கிட ஸ்ரீ சரவணா ஜுவல்லரி, தொண்டி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ளம் கவர்ந்த நகைக்கடை, தங்க நகை சிறு சேமிப்பு திட்டத்தில் சேர்ந்து பயனடையவும். சரவணா ஜுவல்லர்.

0: ஆகாஷ்வாணி மதுரை பண்பலை 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9 விருப்ப கானங்கள் நிகழ்ச்சியில என் விருப்பம் கேட்டோம். இன்னைக்கு அக்டோபர் 2 சர்வதேச அகிம்சை தினமாகவும் கடைபிடிக்கிறோம். வன்முறையை தவிர்த்து அமைதி சகிப்புத்தன்மையோட இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுவது செண்பகவள்ளி. நன்றி நேர்களே. இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2026 ஆண்டின் நிலவரம் குறித்து டெல்லி அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம். இன்னும் சில நொடிகளில்
1: 2026 ஐசி நகோயா.
2: आज दिन की दूसरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं 20वें एशियाई खेलों में. दिन क्या शानदार है रहा है भारत के लिए अब तक. मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ. पहली अपडेट में हमने बताया कि आर्चरी की रेंज से स्वर्ण पदक आया, रजत पदक आया और उसके बाद अब बॉक्सिंग का रिंग लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम महिलाओं के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है. और क्या शानदार जीत है उनकी. पिछली बार भी उनके पास पदक था, वो सिल्वर था. इस बार उन्होंने चीन की जी बाओ को परास्त किया. उनके मुक्कों का दम देखा सारी दुनिया ने. क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में ज़रूर थोड़ा मुश्किल से उनको हुई थी, लेकिन आज वो पूरे फॉर्म पे थी और स्वर्ण पदक एक और भारत को.
3: जी, और अगर रेसलिंग की ही बात कर रहे हैं तो इसी न्यूज़ को आगे बरकरार रखते हैं. भारत के सुजीत कलकल ऑल्सो एडवांस टू द मेन्स फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल विद अ डोमिनेटिंग 10-0 विक्ट्री ओवर ईरान्स अब्बास इब्राहिम जदे सवादो की बाय टेक्निकल सुपेरियोरिटी. सुजीत को सिर्फ 30 सेकेंड चाहिए थे ऑफ द सेकेंड पीरियड टू फिनिश द क्वार्टर फाइनल, एडिंग 2 more points टू कम्प्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन. और इसके साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अब प्रवेश कर लिया. और आपको ये भी बता दें कि सेमीफाइनल का बाउट भी शुरू हो चुका है, जिसका हो सकता है हम आपको अपडेट इसी अपडेट
2: जी, भी बिल्कुल मैं तैयार हूँ इसके लिए.
3: जरूर,
2: ये उनका मुकाबला हो रहा है जापान के कोतोरो कियोका से. और पहला पीरियड में अब बहुत बढ़िया दाम लगाए वहाँ पर सुजीत ने. एक समय तो 5-2 की बढ़त ले ली, लेकिन वहाँ पर चैलेंज किया जापान के पहलवान ने और वो 2 अंक चैलेंज को मान लिया गया, वापस कर दिए गए. 3-2 से बढ़त थी. इसके बाद जापानी ने एक बढ़िया दाम लगाया, 3-3 की बराबरी. मुकाबला बस अभी ख़त्म हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है अंकों के आधार पर सुजीत अब फाइनल में पहुँच गए हैं. कन्फर्मेशन बस होने वाली है.
3: चलिए, थोड़ा इंतजार रहेगा कन्फर्मेशन का उसका. लेकिन टैक्वांडो की दुनिया से आपको बता दें कि भारत का सफर इसके अंदर आकर आज समाप्त हो गया. इंडियाज कशिश मलिक सफर्ड 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान्स रीता बक्शेवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स. मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच्ड बिटवीन द 2 कॉम्पिटिटर्स.
2: और इसके अलावा साइकिलिंग में आज तमाम मुकाबले हैं. सुबह से ही वेलोड्रोम जो है गुलजार हो जाता है. आज भारत कई स्पर्धाओं में महिलाओं के ओमनियम में हर्षिता जाखड़ वो 12वें स्थान पर रहीं और कुल 13 लोग ही थे तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकी. अब पुरुष कीरन में रोनाल्डो सिंह थे, वो क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई वो भी नहीं कर सके. लेकिन डेविड बेकहम उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया, उन्होंने क्वालिफाई किया और वो पहुंच गए हैं अगले चक्र में. लेकिन इसके बाद रिपेचेज में डेविड ने क्वालिफाई किया है और

0: रिपेचेस में रोनाल्डो को भी मौका मिल गया और रोनाल्डो ने यहाँ पर बढ़िया खेला, छठे स्थान पर आए और अब वो सेमीफाइनल चक्र के लिए पहुंच गए, यानी उनकी साइकिल के पैडल अभी चलने वाले हैं भारतीय साइकिलिस्ट के।
1: उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी खबर लेकर आए वो भारत के लिए। आगे बढ़ेंगे सेपेक्टक्रो की तरफ भी दोस्तों। आनंद ग्रुप ए मैच ऑफ द सेपेक्टक्रो वुमेन्स क्वाड्रेंट, थाईलैंड हैव एब्सोल्युटली डेसिमेटेड इंडिया। जी हाँ, दे टुक द सेकंड सेट बाय अ मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स। दे वर ड्राउन 13-15 बाय देयर ओपोनेंट्स इन द first set as they lost it earlier. India have thus bowed out of the event after losing all three of their group games. जी हाँ, भारत का सफर इसके अंदर भी समाप्त हो ही गया।
0: और रेसलिंग में एक खबर और भी है, अच्छी खबर है। दीपांशी हार गई थी 50 किलोग्राम भार वर्ग में आज, लेकिन उनको मौका एक और मिल गया है रेपेचेज में और कंबोडिया की पहलवान के साथ उनका मुकाबला बस इस समय शुरुआत हो गई है। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है।
1: जी, और आपको याद दिला दें कि आज के दिन की शुरुआत सबसे अच्छी खबर के साथ हुई थी, जहाँ पर आर्चरी ने हमें आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रदान किया। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो पहली बार आर्चरी की हिस्ट्री में एशियन गेम्स में ऐसा हुआ है कि भारत की टीम फाइनल के अंदर पहुंची। और हम बात करें वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, जिसने आज हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द गोल्ड, thereby defeating South Korea in a very thrilling final. वहीं पर अगर हम recurve mixed team के final उसकी भी बात करें finals की भी, तो उसमें भी हमने देखा कि भारत ने आज हमें उसके अंदर भी एक silver पदक ला के दिया। So recurve mixed team के अंदर we were able to satisfy ourselves with a silver
0: medal. और ये और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि कोरिया जो है वो powerhouse है। कोरिया 10 बार champion रहा है, उस टीम को परास्त करना और इस अंदाज से परास्त करना बहुत ही शानदार, लड़कियों ने गजब करके दिखाया।
1: जी, और मिक्स टीम सेमीफाइनल, मिक्स टीम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी गॉट द सिल्वर आउट देयर डेफिनेटली। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर गुड न्यूज ऑफ द डे आल्सो, और शुड आई से a nice news that's coming up away, which is in rugby sevens, where India produced a dominant performance to defeat Malaysia 26-5 in the women's rugby seven pool E match at the Asian Games. Bhumika Shukla scored 3 tries, while Tudu Sandhya Rani and Kumari Aarti also crossed the line as India secured a comfortable victory.
0: Sakshi, बहुत अच्छी बात इसलिए भी है ये क्योंकि रग्बी सेवन का पहला मैच जो कल भारत ने खेला था बहुत बुरी तरह हारे थे, उसको देखते हुए आज उतनी ही अच्छी जीत है। 26-5 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता है।
1: Right, medal table पे हो सकता है थोड़ी सी हलचल जरूर मचे, लेकिन the last update that we had was that India was still at the 7th position, लेकिन क्योंकि अब ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि रेसलिंग के अंदर भी हो सकता है मेडल्स आए, तो मेडल टेबल में थोड़ी बहुत हलचल तो मचेगी। हम आपको वो अपडेट अगले अपडेट में लाकर देंगे कि भारत की पोजीशन में क्या उत्थान हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं ऑन द मेडल टेबल। फॉर नाउ इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक सेइंग गुड बाय, विल बी जॉइनिंग बैक अगेन इन द नेक्स्ट अपडेट एट 11:30 AM।
2: மதுரை FM 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் FM 100.9
3: FM ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
4: நேரம் 10:36, ஆகாஷ்வாணி மதுரை பண்பலை 103.3, ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9. இருபட பாடல்கள் நிகழ்ச்சிக்காக இணைத்து இருக்கிறோம். மீண்டும் வணக்கம் நேர்களை. இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில கிராமத்து பின்னணியில குடும்ப உறவுகளையும் விளையாட்டையும் மையமாக வச்சு உருவான இரண்டு செம என்டர்டைனிங்கான திரைப்படங்களோட பாடல்கள் தான் கேட்க போறோம். ஒரு திரைப்படம் ஆக்ஷன், குடும்ப பாசம், கபடி விளையாட்டுன்னு கலக்கிய அதர்வா ராஜ்கிரண் நடித்த பட்டத்து அரசன். இன்னொரு திரைப்படம் கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான ஜாலியான குஸ்தி சண்டையும் காதலும் நிறைந்த விஷ்ணு விஷால் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி நடித்த கட்டா குஸ்தி திரைப்படங்கள்ல இருந்தும் தான் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான பாடல்கள் எல்லாமே கேட்டு ரசிக்க காத்திருக்கிறோம். இணைந்திருங்கள் ஆகாஷ்வாணியோடு.

0: நேயர்களே, இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த அண்மை நிலவரம் டெல்லியில் இருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா.
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनुपम पाठक. हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स. घड़ी में बज रहे हैं 11:30 एंड ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे सो फार इन द लास्ट वन आवर विच इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी, जहाँ मेन्स रिकर्व टीम सेमीफाइनल जो हमारी भारत की जिन्होंने प्रवेश किया था, अब उन्होंने वहाँ पर भी जीत दर्ज करके फाइनल्स में गोल्ड मेडल के लिए अपने लिए जगह बना ली है. जी हाँ, बता दे दैट इंडिया हैव स्टॉर्म्ड इनटू द मेंस रिकर्व टीम फाइनल्स आफ्टर डिफीटिंग ईरान 6-0 इन अ डोमिनेंट सेमीफाइनल. ईरान स्टार्टेड द थर्ड सेट स्ट्रॉन्गली विद 29-30 बट इंडिया रिस्पोंडेड विद अ सुपर 56 टू एज द सेट 56-55. नीरज चौहान हिट अ 10, यशदीप बोगे एडेड अवर 9 एंड धीरज बम्मदेवारा सील्ड द विक्ट्री विद अ क्रूशियल 9. इंडिया हैड अर्लियर वन द फर्स्ट टू सेट्स 58-53 एंड 56-53 टू टेक अ कमांडिंग 4-0 लीड. And thereby the Indian trio of Dheeraj, Neeraj and Yashdeep will now face South Korea in the gold medal match. और आपको बता दें कि क्योंकि गोल्ड मेडल में अब मेन्स रिकर्व टीम सेमीफाइनल जो खेल के अभी प्रवेश करी है, आज दिन की शुरुआत भी आर्चरी की टीम ने हमारे लिए बहुत अच्छे से की थी. वहीं महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया था और रिकर्व मिक्स टीम के सेमीफाइनल्स के बाद भी हमने देखा था कि किस तरह से भारत ने उसमें भी हमें सिल्वर मेडल दिलवाया जो फाइनल्स हुए थे. सो क्योंकि हमारी महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने आज हमें स्वर्ण पदक दिलवाया है, तो चलिए आइए सुनते हैं कि कुमकुम मोहत ने आज क्या कहा.
3: उसमें उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी और मेडल तो आएगा, 100% आएगा. और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है.
4: बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात है कि इस स्पर्धा में, रिकर्व की स्पर्धा में आज तीन मुकाबले हैं साक्षी और तीनों में पदक हैं. एक स्वर्ण आ चुका, एक रजत आ गया और एक स्वर्ण ही आना चाहिए. और भी एक और पदक जिसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था अपनी पिछली अपडेट में, सेलिंग में डिंगी में ICILCA 7 क्लास जो होती है उसकी डिंगी, उसमें नेत्रा कुमानन ने फाइनल रेस 1 और 2 आज थी उसमें उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है. गोल्ड मेडल थाईलैंड के सोफिया माउंटगोमरी को मिला और सिल्वर पदक जो है वो सिंगापुर के पास गया. उनका जो समापन था वो 14 अंक कुल थे, नेट भी 14 अंक थे, हांगकांग की स्टेफनी नॉटन के भी 14 ही अंक थे. लेकिन किस्मत वाली रही यहाँ पर नेत्रा, इसलिए क्योंकि रिकैलकुलेशन जब होता है अगर बराबरी होने पर, उसमें उनको एक पेनल्टी कम मिली थी और ज़्यादा थी स्टेफनी की, तो यानी ये कांस्य पदक भारत के पास और आया.
2: जी, रेसलिंग की दुनिया से भी आज बहुत अच्छी खबर आई है. सबसे पहली अच्छी खबर जो हमने आपको दी थी दिन में थोड़ी देर पहले, वो ये है कि इंडिया की लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाउजी इन द वुमेन 75 किलोग्राम कैटेगरी एट द एशियन बाउट. लवलीना मेंटेन्ड हर कंपोज्ड अप्रोच थ्रू आउट द बाउट, अलाइंग बाउट टू

0: forward while responding with effective counter punches. After winning the first two rounds, the Indian boxer controlled the third round as well to complete a dominant victory by going ahead and winning the bout by a unanimous 5-0 decision. आज उनका जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो लवलीना बोरगोहेन को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और उसके साथ साथ इट कुडंट हैव बिकम अ बेटर डे फॉर हर बिकॉज द बर्थडे जस्ट बिकेम इवन स्वीटर एंड परफेक्ट फॉर लवलीना बोरगोहेन, हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली सेकेंड इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आफ्टर द लेजेंडरी एमसी मैरीकॉम. द 29-year-old इंडियन डिफीटेड चाइना ज़ियोबा 5-0 इन अ क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट.
1: बिल्कुल, और ये जो लवलीना है, इसकी जितनी तारीफ करें सुनहरा उपहार उन्हें आज मिला है. सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जिस तरह से उन्होंने खेला था, जिस तरह से बॉक्सिंग की थी, लगातार कॉम्बिनेशन पंचेस लगाए थे, वो तो देखने ही वाले थे. हम बात सेलिंग की कर रहे थे, सेलिंग में और लोग भी हैं. विष्णु सर्वनन इस समय मेंडिंगी उसमें कांस्य पदक से चूक गए, वो चौथे स्थान पर आए हैं. और जो विंड सर्फिंग है, आज वैसे पूरे जापान में हवाएं बहुत चल रही, खासतौर से जहाँ जहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, आर्चरी में हवाओं का बहुत कहर रहा है. विंड सर्फिंग में काव्या कोयलो सातवें स्थान पर हैं ओपनिंग सीरीज में, सीरीज दसवीं की रेस के बाद. और मिक्स्ड सर्फिंग में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र कुमार वो पाँचवें स्थान पर बने हैं. गोल्फ में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि महिलाओं के स्ट्रोक प्ले में प्रवणी उर्स जो हैं वो पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, और दीक्षा डागर और अदिति अशोक के साथ जो भारतीय टीम है वो दूसरे स्थान पर इस समय चल रही है. बस ये बढ़त बनाए रखें. और पुरुषों की बात करें तो वीर अलावत 10वें स्थान पर हैं, सप्तक तलवार 11वें, और पुरुषों की जो टीम है उसमें भारत जो है इस समय छठे स्थान पर चल रहा है. तो गोल्फ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं.
0: जी, एंड अ वेरी क्विक अपडेट विच वी लेफ्ट यू इन द लास्ट अपडेट आपके साथ, जब हमने छोड़ा था पिछले अपडेट में, कि भारत के सुजीत खलकर पुल्ड ऑफ अ स्टनिंग अपसेट डिफीटिंग रेनिंग ओलंपिक चैंपियन एंड होम फेवरेट कोटारो क्यू का इन द मेन्स फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल. और इसके साथ अब वो गोल्ड मेडल के लिए 65 किलोग्राम फाइनल कैटेगरी में कम्पीट करेंगे आज दोपहर 3:45 टू बी मोर स्पेसिफिक 2:46 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. द न्यूज हैज बिकम ऑफिशियल. सुजीत 1-3-3 ऑन क्राइटेरिया, scoring the decisive final point after trailing 0-2 in the opening period. The Indian wrestler fought back brilliantly in the second period, scoring 3 points to seal a memorable victory. Here's rooting for Sujit.
1: और उनका final जो होना है वो तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदीव के साथ होना है. तो उम्मीद करें एक स्वर्ण पदक और भारत की राह देख रहा है.
0: Right, and a quick update also from wrestling to just finish this off. India's Dipanshi has kept her medal hopes alive after dominating Cambodia's Deet Samnang in the women's 50 kilogram repercharge. She secured a 10-0 victory by technical superiority to book a place in the bronze medal bout. और अब आपको भारत की दीपांशी भी आज दोपहर 3:58 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खेलते हुए अपने बाउट में नजर आएंगी. होपफुली ऑल्सो गेटिंग अस अ पोडियम फिनिश इन दैट. दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस अपडेट. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ अनुपम पाठक. हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत. दोबारा एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे दोपहर के 12:30.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: மதுரை எஃப்எம் 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9
4: எஃப்எம் ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
5: நேரம் 11:37 ஆகாஷ்வாணி மதுரை பண்பலை 103.3 ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9 கண்ணாடி மாளிகை கேட்டுட்டுக்கும். இன்றைய கண்ணாடி மாளிகை அமைதி அப்படின்ற தலைப்பை ஒட்டிய கருத்துக்களோடு வளம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த நேரை சந்திக்கலாம். ஒரு முறை புத்தரை ஒருத்தர் வந்து கண்டபடி காரணமே இல்லாமல் திட்டிருக்காரு. புத்தர் நமக்கு தெரியும் அமைதியாக இருப்பார், அவர் அதையுமே அமைதியாக சிரிச்சுக்கிட்டே உட்காந்து கேட்டுட்ருக்காரு. உடனே அந்த பர்சன் திட்டி முடித்ததும், உங்ககிட்ட ஒரு பரிசு இருக்குது, அதை நீ ஒருத்தவங்ககிட்ட கொடுக்குற, அதை வாங்கிக்கலன்னா அந்த பரிசு யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. கண்டிப்பாக அது என்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அதே போல தான் நீ கொடுத்த கோபத்தையும் திட்டையும் நான் எடுத்துக்கல, ஸோ அது உன்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னு அமைதியாக பதில் சொல்லியிருக்காரு. கோபமும் கெட்ட வார்த்தைகளும் மற்றவங்க நமக்கு தர கிஃப்ட் மாதிரி, அதை நம்ம எடுத்துக்காமல் அமைதியாக கடந்து போயிட்டால் பாதிப்பு நமக்கு கிடையாது அவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இணைப்பில் காத்திருக்கக்கூடிய நேயர் யார், எங்கிருந்து அப்படின்றத கேட்டலாமா?
6: கேட்டலாம். வணக்கம்.
7: வணக்கம் மேடம், அதாவது ரோசி மேடம் அவர்களுக்கும் செண்பவழி மேடம் அவர்களுக்கும், நேயர்கள் அனைவருக்கும், நிலையத்தார் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் சொல்லிக் கொள்வது மதுரையிலிருந்து மணிமாறன்.
6: சொல்லுங்க.
7: மேடம் எனக்கு 63 வயசு ஆயிடுச்சு மேடம்.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த நிலவரம் டெல்லி அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐஜி நகோயா.
2: Hello and a very warm welcome to all our lovely listeners who are tuning in right now at 12:30 PM on Akashvani. Hum lekar aage aapke liye ongoing Asian Games 2026 ke live updates. Main hu Sakshi Manwal. Mere saath yahan par maujood hai Anupam Pathak. To sabse pehle the big news of the day coming from the world of archery. Aaj hamare archers ne Bharat ka dil khush kar diya. Ji haan, humne dekha ki men's recurve team final mein Bharat ne silver medal apne naam kar liya. Ji haan, India won the silver in the men's recurve team event after South Korea clinched the gold medal with a 2-0 set win in the final phase, completing a 5-1 victory overall. India started the third set strongly with Neeraj Chauhan hitting a 10, followed by 9s from Yashdeep Bogey and Dheeraj Bommadevara. However, Neeraj's 7 in the second rotation hurt India's chances as they finished the set on 54. South Korea needed 27 from their final 3 arrows to win the gold. Lee Woo-seok hit a 10, Kim Jae-deok a 9, and Kim Woo-jin seal the title with a 9 as the Koreans secured back-to-back Asian gold medals in the event. Anupam.
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर. कुल मिलाकर हम इसको ज़रूर कहेंगे क्योंकि आर्चरी में अगर हम पिछले प्रदर्शनों को देखते हैं तो इस बार बहुत पिछले इसके पहले रिकर्व में कुल मिलाकर एशियन गेम्स में 3 पदक आए थे. इस बार आज एक दिन में 3 पदक आए हैं, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर. हालांकि ये जो पहला सेट था उसकी शुरुआत बहुत अच्छी भारत ने की थी, दोनों बराबर बराबर थे और एकदम आखिरी एरो पर जाकर ये स्थिति आई थी कि मामला बराबरी पर हुआ वरना भारत जीतता. उसको अंक बराबर रहे. दूसरे सेट में यशदीप ने एक एरो गड़बड़ किया और जैसा आपने बताया आखिरी सेट में नीरज का वो तीर ऐसा भटका. लेकिन आज के लिए ये बात ज़रूर कही जाएगी, जब हवा थोड़ी सी आज तेज़ चल रही थी लगातार, तो हवा के साथ अमूमन लोगों की शिकायत आर्चर्स की रहती है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन प्रदर्शन और अंतिम निर्णय जो आता है वही आपको पदक तालिका पर ले जाता है, पोडियम पर ले जाता है. लेकिन फिर भी रजत बहुत स्वागत योग्य बात है. और इसके अलावा हम बात करें, अभी दो जगह दो बॉक्सर्स हमारे उतरने हैं, दो जगह स्वर्ण पदक की उम्मीद है. उसके अलावा अभी कुश्ती में फाइनल खेलना है नीरज को और कांस्य पदक की भी उम्मीद है दीपांशी से. मैं आपको ताज़ा जानकारी बता दूं, इस समय केनो में कयाक क्रॉस में शिखा चौहान 9वें स्थान पर रहकर क्वालिफाई की थी. हमने बताया था क्वार्टर फाइनल में वो 3रे स्थान पर आई, क्वालिफाई नहीं कर पाई. प्रद्युम्न सिंह राठौर ने क्वालिफाई किया था लेकिन क्वार्टर फाइनल इस बीच हो चुका है, उसमें वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके और 4थे स्थान पर रहे, जबकि टॉप पहले जो 2 स्थान पर आते हैं वो क्वालिफाई करते हैं.
2: जी, और डेंगी की दुनिया से भी आपको कुछ लेटेस्ट खबर दे दें कि आज इंडियाज नेत्रा कुमानन सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स डिंगी सेलिंग इवेंट आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फाइट बैक इन द फाइनल रेसेस. आफ्टर अ डिफिकल्ट ओपनिंग रेस नेत्रा बाउंस्ड बैक ब्रिलियंटली टू विन द सेकेंड फाइनल रेस. शी फिनिश लेवल ऑन पॉइंट्स विद हांगकॉन्ग स्टेफनी लुईस नॉर्टन, बट नेत्रा सुपीरियर हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट नॉर्टन सॉ हर क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल. एंड जस्ट वन क्विक गुड न्यूज दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर एंड हैड शेयर्ड इन द लास्ट अपडेट, की बॉक्सिंग की दुनिया से आज हमें गोल्ड मेडल आ गया. जी हाँ, द बर्थडे गर्ल इंडियाज लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाउजी इन द वुमेन्स 75 किलोग्राम गोल्ड मेडल बाउट एट द एशियन गेम्स एंड देयरबाय शी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली सेकेंड इंडियन वुमन बॉक्सर टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आफ्टर द लेजेंडरी MC मैरीकॉम. व्हाट अ फीट, व्हाट एन अचीवमेंट अनुभव.
3: बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात. और जो आपने बात की साक्षी नेत्रा कुमारन की, सेलिंग में भारत गाहे बगाहे पदक लाता रहा है. नेत्रा कुमारन तमिलनाडु से आती हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं, 15 बरस की उम्र से ट्रेनिंग शुरू की थी. और मज़े की बात क्या है ना, जो बड़े लोगों के साथ होता है, कई खेल खेलती थी, टेनिस खेलती थी, स्केटिंग खेलती थी और भरतनाट्यम की डांसर हैं. इसके बाद

0: जब उनके ने फाइनल कर लिया कि नहीं मुझे अब सेलिंग ही करनी है, तो स्पेन में ट्रेनिंग की है, ओलंपिक में खेल चुकी हैं भारत की ओर से, तो यकीनन उनका ये जो कांस्य पदक है बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे चमकते दमकते रंग का पदक है।
1: Indeed, and Sepetakro की दुनिया से भी आपको क्विक अपडेट दे दें कि ग्रुप ए के मैच ऑफ द Sepetakro वुमेन्स क्वाड्रेंट थाईलैंड एब्सोल्युटली डेसिमेटेड एंड फिनिश्ड इंडिया। दे टुक द सेकेंड सेट बाय मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स। फर्स्ट इनिशियली वी ऑल्सो सॉ दैट इंडियंस वर ड्राउन 13-15 बाय थाईलैंड इन द फर्स्ट सेट एज दे लॉस्ट इट अर्लियर। इंडिया दस हैव बोर्ड आउट ऑफ द इवेंट आफ्टर लूजिंग ऑल ऑफ देयर ग्रुप गेम्स। तो Sepetakro के अंदर भारत का सफर यहाँ पर आकर समाप्त हो गया।
0: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा क्षण है, अविस्मरणीय है, जो लोग भी इसको वहां पर उपस्थित हैं इनको जानकारी मिल रही। लवलीना बोरगोहेन के गले में स्वर्ण पदक इस समय डाला जा रहा है, पदक सेरेमनी जो होती है वो हो रही है, भारत का राष्ट्रगान की जो धुन है बस वो गूंजने वाली है। आपने देश का नाम रोशन किया है लवलीना, और आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। साइकिलिंग का ताज़ा जो समाचार है वो ये है, डेविड बेकहम जो रिपेचेस में होकर पहुँच गए थे, क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने मेंस पुरुषों की कैरियन स्पर्धा में साइकिलिंग में, वो पांचवें स्थान पर आए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और इस समय पुरुषों की मेडिसिन प्रतियोगिता जो है स्पर्धा वो चल रही है।
1: जी, अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज ऑन द टेलीविजन एज वी विटनेस द हिस्टोरिक गोल बाय लवलीना बोरगोहेन जस्ट वेटिंग मोमेंट्स अवे फ्रॉम द नेशनल एंथम आवर प्राइड आवर लव।
0: साक्षी, जन्मदिन पे इससे बेहतर तोहफा चाहोगी क्या?
1: बिल्कुल भी नहीं, उससे ज्यादा क्या खूबसूरत हो सकता है अनुपम, कि आपको आपके जन्मदिन पर मौका मिले कि आप अपने देश को और अपने देशवासियों को, अपने परिवार के जनों को गौरवान्वित महसूस करवा सकें थ्रू योर अकम्पलिशमेंट्स। व्हाट बेटर देन दैट। ऑन दैट नोट, इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक फॉर नाउ सेइंग गुड बाय। विल बी जॉइनिंग यू राइट बैक एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026।
2: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஆண்டின் நிலவரம் டெல்லி அஞ்சல் செய்ய கேட்டோம்.

चिराग पगला कहीं का कटी पतंग मैं तुलसी तेरे आंगन की साजन तीसरी मंजिल कारवां जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं।

0: कोशिश कर सकती हैं, लगभग 4 बजे के आसपास उनकी कुश्ती होगी और सुजीत पर तो सबकी निगाहें होंगी
1: जी। और इसके साथ आप मुझे साक्षी मांडवाल और अनुपम पाठक को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। हम आपके साथ दोबारा एक बार दोपहर के 3:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू एंड गुड बाय।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को, विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
2: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
3: श्रोताओ, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
2: जी।
3: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
2: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
3: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
2: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
3: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे

0: प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
1: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे,
0: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया। उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
1: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था। वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
0: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था। वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
1: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
0: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
1: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
0: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है। और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए। उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
1: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
0: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
1: तो श्रोताओं, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
0: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
1: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
1: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
2: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखे कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
3: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

0: यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे?
1: महात्मा
0: गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू भर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: हमारी खुशनसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
2: ये अचकन देशी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकह लगाया और फरमाया,
2: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए।

0: शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
1: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
2: जी बापू।
1: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
3: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
1: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
4: कुछ खास होना चाहिए।
2: मजदूर रहेंगे उस
3: मेहनत करने वाले।
4: बापू, धर्म का काम है ये तो।
2: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
1: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते। एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
4: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
1: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
4: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल, ये ठीक है। हाँ, बिल्कुल।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल की लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापा को जरूर बताऊंगी।
1: अरे मेरे

0: नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन।
1: नहीं बापू।
0: नहीं अरे सुन तो, बापू से मत बोल। अरे मेरी बात सुन। नहीं नहीं अरे अरे अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
2: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया।
1: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
1: ठीक है बापू।
2: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी।
4: बापू बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
4: जी बापू मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
5: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है। इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉलस्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाला है। टमाटर काट लो।
3: हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट
4: लूँ। अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
4: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
4: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
4: ठीक है चंपा, ठीक।
3: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर,
4: मुझे मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
4: नमस्कार बापू।
3: प्रणाम बापू।
5: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
4: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
5: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
5: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं का...

0: काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
1: जी बापू।
0: अच्छा जाओ।
1: जी।
0: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
2: जी, जी
1: चलो चलते हैं।
2: जी।
3: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे। तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
4: बापू बापू ये देखिए।
0: अरे हाँ हाँ बिमला, कहो कैसे आना हुआ?
4: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
0: देखो बिमला, ये जो केलों पर

0: बापू बापू ये देखिए।
1: अरे हाँ हाँ बिमला आओ, कहो कैसे आना हुआ?
0: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं, दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
1: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना
0: जी,
1: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
0: हाँ
1: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दे, सोनू ने ऐसे दे दिए, उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
0: जी बापू।
1: हाँ समझ गई ना?
0: जी।
1: जाओ अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
0: जी बापू धन्यवाद।
2: साथियों यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
3: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
1: अरे सुधीर नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
3: हाँ?
1: अभी तो इसे और चमकाना है।
3: ओ
1: देखो इसे और चमकाता हूँ। ये लो आप देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
3: चमकने भी लगा।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
3: हाँ जी बापूजी।
1: हाँ शाबाश।
2: तो साथियों हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं, और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
2: चेतना,
4: अर्शद,
2: सौम्या,
4: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
4: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: மதுரை FM 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் FM 100.9
7: FM ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
8: இந்தியாவின் மாபெரும் தங்க மாளிகை திருச்சி மற்றும் சேலம் மங்களன் மங்கள் தங்க மாளிகையின் தீபாவளி அதிரடி தள்ளுபடி அக்டோபர் 1 முதல் நவம்பர் 7 வரை மிக மிக குறைந்த சேதாரத்தில் BIS 916 HUID ஹால்மார்க் தங்க நகைகள் தீபாவளி அதிரடி தள்ளுபடியாக சேதாரத்தில் 20% தள்ளுபடி. உங்கள் பழைய 916 நகைகளை அன்றைய மார்க்கெட் விலைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து புதிய நகை வாங்கும் போது சேதாரத்தில் 20% தள்ளுபடியும் பெறுங்கள். மங்களன் மங்கள் இந்தியாவின் மாபெரும் தங்க மாளிகை திருச்சி மற்றும் சேலம்.
9: நேரம் பகல் 2:30. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம் நேர்களை, ஆகாஷ்வாணி மதுரை FM 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் FM 100.9 தான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. மதிய வேளையில சில பேர் சாப்பிட்டு இருப்பீங்க, சில பேர் ஒரு குட்டி உறக்கத்தை போட்டா நல்லா இருக்குமேனு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க, சில பேர் வெளியே கிளம்பிட்டு இருப்பீங்க. எந்த வேலையை செஞ்சாலும் கூட வேணுமா ஆகாஷ்வாணி வானொலியும் டியூன் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பொழுது ரொம்பவே

0: मैं साक्षी माडवाल और हम लेकर आ गए हैं घड़ी के 3:30 बजे के अभी के ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स। और लेटेस्ट अपडेट्स में आपको बता दें कि मेडल्स की आज बौछार हो रही है, खास तौर से गोल्ड मेडल्स की फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर बात करें तो रेसलिंग के अंदर द गोल्ड हैज केप्ट ऑन जस्ट बी एडेड, बिकॉज रेसलिंग में हमने देखा कि किस तरह से आज दिन की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद भी हमारी तरफ से जहां दीपांशी ने अभी भी मेडल होप्स रखे थे जारी, वही हमने देखा कि सुजीत कलकल ही वेंट ऑन टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल 65 किलो फाइनल बाय डिफीटिंग इस तजाकिस्तान ओपोनेंट 10-9। एक बहुत सॉलिड कमबैक इन्होंने किया, बिकॉज जहां ये ऑलमोस्ट
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम

दोपहर के 3:31 हो गए हैं। शाम 4 बजे तक मन भावन आपके पसंद के गीत आपको सुनवाता रहेगा। हाँ, वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, तो जितने गीत आपकी फरमाइश के हम सुनवा सकेंगे जरूर सुनवाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ नाम भी शामिल करें। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप एक से ज्यादा मेल हमें मत भेजें, क्योंकि आपकी जब बहुत सारी मेल्स आती हैं तो उसमें कुछ नाम छूट जाते हैं। इतनी आपसे इल्तिजा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। कुछ नाम मैं शामिल करती हूँ मनभावन में जो हमें अभी तक मैसेजेस मिले हैं। आर्यन वर्मा, लीलाधर मोदसिया, बुधराज खोरवाल, हरजिंदर सिंह, वारिस अली खां, कमल मरावी, मस्कीन दादा और भाई मूसा शेख, पुरुषोत्तम सिंह, हरजिंदर सिंह, बहुत सारे मैसेजेस आप भेजते हैं। कई 8-9 मैसेजेस हर दूसरी मेल आपकी होती है, प्लीज ऐसा ना करें। और ये मैसेज अशोक डाले का आया है, गोविंद वैष्णव, सतीश अनेजा और मसरूर हसन। तो हमारी ईमेल आईडी आप जानते हैं, मैसेजेस भेजिए, मैं हिमा आपके साथ हूँ मन भावन प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम शाम 4 बजे तक पूरी करता रहेगा आपकी फरमाइश। मैसेजेस आपके हम तक पहुंच रहे हैं, देखते हैं अगला गीत किसकी पसंद का है।

0: 26 आईजी नगोया।
1: सभी श्रोताओं को फरहतनाज और अनुजा कुमार का नमस्कार।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून फरहत
1: जी। अनुजा, आज 2 अक्टूबर है, एक ऐसी तारीख जो सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे देश की सोच का हिस्सा है।

0: खेलना शुरू कर दिया है और एक मिनट हुआ है, जाहिर सी बात है स्कोर शून्य शून्य है। अभी तक कोई भी मूव नहीं बना है इस समय तक किसी भी टीम की ओर से।
1: राइट, होपिंग दैट इंडिया पुट अप अ गुड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट चाइना, बिकॉज चाइना विल नॉट प्रूव टू बी एन ईजी कॉम्पिटिटर टुडे, स्पेशली इन द फाइनल। बट क्योंकि आज अनुपम ने बताया कि किस तरह से दिन की शुरुआत रही, मेडल्स की बौछार होती रही है आर्चरी में, आज हमने देखा शुरुआत हुई दिन से जहाँ वुमेन्स रिकर्व टीम हमारे लिए गोल्ड लेकर आई, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेन्स रिकर्व टीम फाइनल्स के अंदर भी हमें सिल्वर मेडल आज मिला। वहीं अभी रिसेंटली कंक्लूडेड रेसलिंग बाउट्स में सुजीत कलकर वॉज अप अगेंस्ट अब्दुल मजीद कुदीव, हु इज फ्रॉम तजाकिस्तान, इन द मेन्स फ्री स्टाइल 65 kg फाइनल, वे सुजीत कलकल बॉट इंडिया द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग इज तजाकिस्तान ओपोनेंट 10-9, मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक, बींग 9-2 डाउन। जी हाँ, 9-2 से पीछे थे और वहाँ से कम बैक करके फाइनली ही वॉज एबल टू डिफीट इज तजाक ओपोनेंट 10-9। वॉट बेटर दैन दैट, एंड ऑल्सो लेट्स टेल यू ऑल दैट अभी दीपांशी ऑल्सो हैज केप्ट द मेडल होप्स फॉर इंडिया अप एंड अलाइव, बिकॉज शी हैड बीन डोमिनेटिंग Cambodia's Deet Samnang in the women's 50 kg repechage. She secured a 10-0 victory by technical superiority earlier in the day to book a place in the bronze medal bout. Aur unka bhi ab bout aane wala hai thodi hi der mein dosto, at 3:58 PM Indian Standard Time. So here's hoping and keeping the fingers crossed, Anupam, that Deepanshi should be getting us a bronze medal tonight.
0: Bilkul aa sakta hai aur aaj wo lucky bhi rahi hain is mamle mein ki Japan ki Susaki Mui se unka muqabla hua tha, pehle hi jo unki bout thi wahi haar gayi thi aaj wo, lekin 50 kilo के इसमें दीपांशी को अगर आपने देखा है क्या, लगता है इतनी छोटी सी बच्ची, 16 साल की लड़की, और वो कमाल करके दिखा रही है। इस समय देश की सबसे उभरती खेल प्रतिभाओं में अगर आप गिनती पे गिनिए नाम, उंगलियों पर गिनने की कोशिश करिए, तो उसमें दीपांशी का नाम आता है। तो जो जापान की पहलवान थी वो पहुँच गई फाइनल तक, तो फिर मौका मिला रिपेचैज में दीपांशी को, जहां उसने कोई चूक नहीं की और ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसका मुकाबला होना है। लगता है मुझे इस हॉकी का मैच जब तक ख़त्म होने वाला होगा तब तक शायद वो बाउट भी हो जाए। और आपने सुजीत की बात की, जी सुजीत कलकल की बात तो हम बार बार बार बार करना चाहेंगे। आज सबको लगने लगा था, हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद ये बाउट तो सुजीत के हाथ से गई, 0-2 से पीछे था, इसके पहले 8 अंक हो चुके थे और उसको क्या करेगा। लेकिन एक ही आदमी था जिसको भरोसा था, नहीं अभी मैं वापसी कर सकता हूँ, एक भी अंक और गंवाते तो फिर मामला पलट जाता, लेकिन उन्होंने वो एक अंक आने ही नहीं दिया और एक के बाद एक वो दांव चले, वो मूव किए पैर के ऊपर, ख़ास तौर से उनके जो 3 आक्रमण उन्होंने किए थे जिसपे 2-2, 2-6 अंक उन्होंने कमाए, कुल मिला के एक साथ उन्होंने 8 अंक एक के बाद एक कमाए। और जब मुकाबला समाप्त हुआ उस समय उनका हाथ ऊपर किया गया, स्वर्ण पदक, गजब बाउट, गजब कुश्ती। हमें याद आ रही थी ये बजरंग पुनिया, ये भी इसी 65 किलोग्राम भार वर्ग में होते थे, उसके पहले योगेश्वर दत्त। तो ये जो एक सिलसिला है, एक से एक बेहतरीन पहलवान निकालने का, बजरंग पुनिया की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आगे निकाला है।
1: Right, and in boxing, very quick updates coming to you. The best news of the day for all our listeners who are tuning into Akashvani right now, ki Bharat ki Lovlina Borgohain also bagged the gold medal by defeating China's Bao Zi in the women's 75 kg gold medal bout at the Asian Games today. A beautiful birthday present for the birthday girl, who also scripted history by becoming only the second Indian woman boxer to win an Asian Games gold medal after the legendary MC Mary Kom. Unke saath saath Parveen Hooda also held a nerve in a closely fought final against Chen Nien Chen, and she was also able to win her bout by a 3-2 split decision and secured the gold medal in the women's 65 kg category. And then finally we saw Ankush Pangal also up against Kim Min Seong in the men's 80 kg final bout, where he was able to defeat him straight down 4-0 and thereby bring in the gold medal for India.
0: Aur bahut sunahra akshan hai, isi samay Ankush Pangal ke gale mein swarn padak pehnaya ja raha hai aur rashtragan ki dhun baj rahi hai Japan mein.
1: With that, it's a wrap from me, Sakshi Manwala and Anupa Patak for now. We'll be tuning in back again at 5:30 PM with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026. For now, thank you so much for tuning in. Goodbye.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: மதுரை எஃப்எம் 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9
4: எஃப்எம் ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள். நேரமலை 4:36 ஆயாச்சு. ஆகாஷ் வாணி மதுரை எஃப்எம் 103.3, ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9. நேர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு அன்பான மாலை வணக்கம். இந்த ஒரு அரை மணி நேரம்

0: आज का दिन है उस व्यक्ति को याद करने का जिसने दुनिया को बताया कि सबसे बड़ी लड़ाई बिना हथियार उठाए भी जीती जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रही हैं राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें पूरा देश प्यार से बापू कहता है। बापू ने हमें सिखाया कि दुनिया को जीतने के लिए हथियारों की नहीं, हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होती है। और आज के इस विशेष कार्यक्रम का आरंभ हम बापू के एक अनमोल विचार से करते हैं। आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप संसार में
1: शुरू होगा और जब खत्म होगा तो स्कोर लाइन क्या होगी। हर एक के मन में दिल में तमन्ना यही है कि भारत की लड़कियां एक स्वर्ण पदक और लेकर आए। और आज के दिन की जैसे शुरुआत हुई थी स्वर्ण पदकों की झड़ी के साथ, एक के बाद एक स्वर्ण पदक आए हैं, तो भारत की लड़कियां हॉकी में भी स्वर्ण पदक लेकर आए। शुरुआत हो गई है, अभी अभी बस सीटी बजी है लड़कियों ने।

0: நேரமலை 5:29 ஆகாஷ் மதுரை மற்றும் ராமேஸ்வரம் பண்பலை நேர்களே, மாலை 5:35 மாலை தன்றல் தொடரும். அதற்கு முன்பாக இந்த ஒரு 5 நிமிடம் நாம் கேட்க இருக்கின்றோம். ஜப்பானில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் 2026 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த அண்மை நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாக.
1: मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक एंड द बिग न्यूज जो हम दोनों आपके लिए अभी लेकर आ रहे हैं वो ये है कि भारतीय महिलाओं का फाइनल गोल्ड मेडल का मुकाबला आज चल रहा है भारत और चाइना के बीच में।
2: जी बिल्कुल, जिस समय हमने अपनी पिछली अपडेट खत्म की थी उसी समय शुरुआत हुई थी इस मुकाबले की। भारत स्वर्ण पदक की तलाश में, जो उसने आखिरी बार 1982 में जीता था, वहीं चीन है डिफेंडिंग चैंपियन। भारत पूरी ताकत लगा दे रहा है कि चीन को आगे न पहुंचने से, और मजे की बात कह रही है आज लगता है जो किस्मत की देवी होती है वो भी मेहरबान है, लेकिन वो मेहरबान उन पर होती है जो मेहनत करते हैं। और भारतीय टीम पूरी मशक्कत के साथ इस मैच में बने रहने का प्रयास कर रही है। हुआ यह है कि पहले क्वार्टर में ही बहुत शानदार मौका मिल गया भारत को, और भारत ने कोई चूक नहीं की। और लाल रंग सियामी ने अब जो अपना 200वां मैच खेल रही हैं आज, उन्होंने एक रिकर्व पास पर क्या ज़बरदस्त शॉट लगाया जो किसी भी गोलकीपर को रोकना बहुत मुश्किल होता, और भारत 1-0 से आगे हो गया। उसके बाद से भारत डिफेंस में ज़्यादा है, उतने मूव नहीं बना रहा है। चीन पूरी कोशिश कर रहा है, 5 पेनल्टी कॉर्नर चीन को मिल चुके हैं, भारत के हिस्से में सिर्फ एक आया है। और आप विश्वास करेंगे, दूसरे क्वार्टर में एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला चीन को, और उसको सविता पूनिया ने एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अकल्पनीय सा सेव करके दिखाया, जैसे उनको पता था कि ये शॉट कहाँ आने वाला है और किस जगह आएगा। अपने ग्लव्स में गेंद को रोका और चीन को बराबरी करने से रोक दिया। उसके बाद से चीन लगातार हमले कर रहा है, लेकिन भारत अपनी इस लीड को बरकरार रखे हुए है। पोजिशन चीन के पास ज़्यादा है, लेकिन स्कोर लाइन भारत के पक्ष में। अब हाफ टाइम हो चुका है और दूसरे हिस्से में यानी जो तीसरा क्वार्टर होता है उसका भी आधा वक्त हो चुका है। लीड अभी भी 1-0 चीन।
1: Yeah, hoping that the stars align today for the Indian hockey women's team and that we are able to get the gold in this. All eyes are right now on the screen and hopefully in the next maximum 30 minutes, 20 to 25 minutes, we'll get to have the result. Lekin aapko ye bata de kyunki aaj ke din

0: का ये गोल्ड का मुकाबला है। तो आज काफी सारे पदक भी भारतीयों के नाम लगे हैं अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स में। आर्चरी के अंदर हमने देखा कि कैसे विमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम आज गोल्ड मेडल लेकर आई, हमारे लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो भारत इस तरह के इवेंट के फाइनल्स में भी पहुंचा। मैं बात कर रही हूं विमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। वहीं रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेंस रिकर्व टीम फाइनल के अंदर आज भारत को दो सिल्वर भी मिले। एंड द अमेजिंग थिंग हैज बीन कि डिंजी के इवेंट में भी, यानी सेलिंग के इवेंट में भी, भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया नेत्रा कुमानन ने। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैड अदर इवेंट्स इन विच द मेडल्स केप्ट ऑन पोरिंग इन। इन बॉक्सिंग वी हैड इंडियाज लवलीना बोरगोहेन हु गॉट the gold for India in the 75 kilogram category defeating China's Bao Zi. And then uske baad humne dekha Parveen Hooda bhi hamare liye aaj gold lekar aayi in by a split decision of 3-2 that went in favor of the Indian. And finally we had Ankush Pangal who was up against Kim Min Seong in the men's 80 kilogram final, aur uske andar bhi aaj Bharat ko gold medal mila. To overall Anupam, एक अभी मैंने छोड़ दिया इवेंट रेसलिंग का आपके लिए, लेकिन दिन बहुत खूबसूरत रहा है।
1: बहुत खूबसूरत दिन, आज पदकों के हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया दिन रहा है। और ये जो स्वर्ण पदक है ये सुजीत कलकल ने दिलाया 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती में। और क्या जबरदस्त उन्होंने मैच खेले, एक के बाद एक के बाद एक चार बाउट जीते, फाइनल में पहुंचे। और उसके पहले सेमीफाइनल में उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया। शायद उनकी वो कसक दूर हो गई होगी जिसमें वो ओलंपिक क्वालिफाई करने में बस किस्मत की वजह से चूक गए थे। एक बार तो हवाई जहाज ने डिले कर दिया, वो क्वालिफाइंग मुकाबले में हिस्सा लेने ही नहीं जा पाए थे, तो शायद वो कसक खत्म हो गई होगी। और उसके बाद स्वर्ण पदक जीत कर तो हो ही गई, क्योंकि क्या जबरदस्त उन्होंने फाइनल खेला तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद दीप के विरुद्ध। एकदम पीछे थे, किसी को शायद उम्मीद न रही हो कि अब जीत सकते हैं। 8-7 अंकों का अंतर आ गया था, एक अंक और चाहिए था विपक्षी को, वहां से वापसी की और एक के बाद एक अंक बनाते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में किया।
0: जी एंड वेरी क्विकली टू सम इट अप, अभी भी थर्ड क्वार्टर समाप्त होने में दोस्तों अमूमन 4:30 ही बचे हैं, और अगर ये क्वार्टर भी गोललेस जाता है तो भारत अपनी एक गोल की लीड बरकरार रखेगा चाइना के ऊपर। चाइना को अभी भी एक गोल करना होगा हॉकी के इस फाइनल मैच में, जो गोल्ड मेडल का मैच हो रहा है भारतीय महिलाओं का हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। तो आखिरी क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा कि चाइना हो सकता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव आए, बिकॉज दे वुड देन वांट टू एटलीस्ट टाई द स्कोर सो दैट इट कैन गो इनटू शूट आउट। लेकिन वो तो समय ही बताएगा ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आज भारत ये गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहता है तो पहले तो 1982 के बाद अब ये पहली बार होगा जब भारत फिर से एक गोल्ड मेडल लेकर आएगा हॉकी में। और उसके साथ साथ भारत फिर मेडल टेबल में भी दोस्तों 16 गोल्ड मेडल्स की बदौलत हो सकता है कि उज्बेकिस्तान के साथ स्वॉपिंग कर पाए। अभी भी उज्बेकिस्तान के पास 17 गोल्ड मेडल बने हुए हैं, भारत के 15 हैं। भारत को दो गोल्ड मेडल दौड़ जीतने हैं उज्बेकिस्तान के साथ बराबरी करने में, और उसके बाद विल कम ऑन द फोर्थ प्लेस। बट एटलीस्ट दिस गोल्ड विल डेफिनेटली हेल्प इंडियाज होप्स ऑफ गोइंग अप ऑन द मेडल टैली इंक्रीज। उसके साथ अभी फिलहाल वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का। मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ अनुपम पाठक। हम आपसे दोबारा एक बार जुड़ेंगे शाम को 6:30 विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் 2026 ஆண்டிற்கான 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த அண்மை நிலவரம் டெல்லி அஞ்சலாக கேட்டோம்.
4: ஆகாஷ்வாணி இசை

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ। अभी बस थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है हॉकी का मैच, ऐसा जबरदस्त, यादगार, कभी भी ना भूल पाने वाला मैच। भारतीय महिलाओं ने 1-0 से डिफेंडिंग चैंपियन चीन को परास्त किया, लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटा लिया, और साक्षी बेकरार है बताने के लिए।
2: ऑफ कोर्स इट्स बीन अ थ्रिलर, नेल बाइटिंग एंड टू द मैच शुड आई से, बिकॉज़ इंडिया got the goal very early on in the first quarter itself, but after that the Indian defense stepped up and a beautiful penalty stroke defense that Sabata Punia did for us early part of the game definitely went long way in helping solidify India's chances towards making sure that the defense was all round surrounded the Chinese and never let the China make an entry into the game. China got several penalty corners also, but they could not even convert one penalty corner in their favor. 5 पेनल्टी कॉर्नर्स उनको मिले फर्स्ट हाफ के अंदर ही, और फिर भी उसको भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। हमने देखा कि बाय द एंड, जो कहते हैं ना, लास्ट क्वार्टर में चाइना इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था कि दे पुट एवरीथिंग इनटू द अटैक। उन्होंने अपने गोलकीपर को भी बाहर करवा दिया एंड उनकी जगह एक प्लेयर ले आए जस्ट गो ऑल इन, लेकिन फिर भी वो वहां पर गोल स्कोर नहीं कर पाए टू लेवल द स्कोर। एज अ रिजल्ट द 44-year-old वे, जी हाँ, 1982 में भारत को पिछली बार या आखिरी बार गोल्ड मिला था, और आज भारतीय महिलाओं ने ये ड्राउट खत्म कर दिया दोस्तों। दे हैव ब्रोकन दिस ड्राउट आफ्टर 44 इयर्स टू हेल्प इंडिया गेट दैट कोवेटेड गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स, एंड एज अनुपम जस्ट मेंशन्ड, दिस आल्सो कट्स आवर टिकट टू द 2028 ओलंपिक्स एंड द बिग वन दैट कम्स आस फॉर अस। अ लॉट ऑफ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस दैट वी सी नाउ इन दिस टीम। आप ये देखिए, चाइना के पास बॉल पोजिशन भी भारत से ज्यादा ही रहा, 52% तक चाइना के पास बॉल पोजिशन रहा, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। समाओ हमने आज देखा, और एक चीज सामने जो आई अनुपम, वो ये थी कि चाइना का हमेशा से ही डिफेंस स्ट्रांग रहा है, अटैक उनका स्ट्रांग पॉइंट रहा नहीं है, लेकिन आज वो पहले से ही पहले क्वार्टर में ही बैकफुट पे आ गए थे बिकॉज भारत ने गोल दाग दिया था। तो आज उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बल्कि अटैक करना ही करना था, और समाओ इंडिया ने उसके बाद अपने डिफेंस को इतना प्यारा रखा कि चाइना को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो एक एक की बराबरी भी कर सके।
1: दरअसल पूरा मैच अगर आप देखिए तो आज भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल ही अलग। चीन को चौंकाने वाली रणनीति उन्होंने बनाई, और किस्मत ने साथ ये दिया।

0: अगली गोल आ गया बहुत पहले ही, और क्या जबरदस्त गोल था, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल। लाल रंग सियामी ने किया था, अपना 200वां मैच खेल रही थी आज, और रिवर्स शॉट लिया था उन्होंने डी के भीतर, और उछलता हुआ शॉट, ऐसा शॉट जिसपे शायद बड़े से बड़ा गोलकीपर भी उसको शायद ही रोक पाए। वो जो बढ़त मिली उसके बाद से भारतीय टीम ने अपना गियर ही चेंज कर दिया।
1: Right.
0: चाइना का डिफेंस बहुत अच्छा है, उनका गोलकीपर दुनिया के सबसे अच्छे गोलकीपर्स में है। भारत ने कहा अब हमने ये लीड ले ली, अब हम भले आप हाफ में खेलते रहें या हम पर अटैक करें, हम अपने डिफेंस को एकदम मजबूत कर लेंगे और आपको गोल नहीं करने देंगे। और एक शानदार क्षण और था जब सविता पूनिया ने पहले क्वार्टर में बिच्छू थी गोलकीपर, दूसरे क्वार्टर में गोलकीपर बदला गया, सविता पूनिया को लाया गया और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। देखिए पेनल्टी स्ट्रोक में हॉकी में उसको रोक लेना, और ऐसा रोकना कि अंधा चुक्की नहीं है, वो साफ पता है जैसे उसको कि ये शॉट यहीं आने वाला है, लेफ्ट साइड में मेरे आने वाला है, किनारे आने वाला है, इतना किस तेजी के साथ आने वाला है, गजब का डिफेंस। तो शायद भारतीय टीम उसके बाद बहुत जोश में आ गई, और चीन का एंड में आपने बताया इन्होंने अटैक बहुत किया। मुश्किल होता है इस रणनीति पे खेलना कि हम सिर्फ डिफेंड करेंगे, एक बार लीड ले लिए, एक गोल की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती, लेकिन हम लीड आ गई है, हम इसी को डिफेंड करेंगे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, हम 40 मिनट तक डिफेंड करेंगे।
1: Yes.
0: कमाल करके दिखाया आज।
1: ऑफ कोर्स इंडिया हैड देयर प्रायोरिटी स्ट्रेट टुडे, गोल हो चुका है, उसके बाद अपने डिफेंस को इतना स्ट्रांग रखो कि सामने वाली ऑपोजिशन को मैच के अंदर आने का मौका ही नहीं दो, एंड दे जस्ट वेंट ऑल आउट ऑन द डिफेंस एंड वर एबल टू देन कीप दैट लीड मेंटेन टिल द वेरी एंड, टिल द वेरी लास्ट सेकंड, एंड देयरबाय history has been created, ladies and gentlemen, to all our lovely listeners, because the Indian women's hockey team has brought us that gold after 44 years.
0: And आज का छठा स्वर्ण पदक, आज का दिन तो गजब रहा है भारतीयों के लिए पदकों के हिसाब से।
1: Yes, a quick wrap on the medal table also over here. इसके साथ ही आज अब भारत के सारे इवेंट समाप्त हो गए। भारत की पोजीशन अब पांचवें स्थान पर है, जिसमें है उनके पास 16 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 76 मेडल्स। आपको बता दें आज जो मेडल्स आए हैं, हॉकी में हमारे पास एक गोल्ड आ गया, बॉक्सिंग में हमारे पास 3 गोल्ड आए, रेसलिंग में 1 गोल्ड आया, आर्चरी में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, सेलिंग में 1 ब्रॉन्ज और सेपक तक्रो में 1 ब्रॉन्ज, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 16 गोल्ड, प्लेसिंग इंडिया ऑन द 5th पोजीशन। दैट इज ऑल दैट वी हैड फॉर यू फॉर राइट नाउ। दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक साइनिंग ऑफ, विल बी जॉइनिंग यू बैक एट द 7:30 अपडेट विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड अ रैप अप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்து அண்மை நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: இந்திய வானொலி சேவையில் என்றும் முதலிடம் வகிக்கும் ஆகாஷ்வாணியில் இப்போது நீங்களும் விளம்பர நிறுவனமாக பதிவு செய்யலாம். விவரங்களுக்கு 044-24-98-64-58 மற்றும் 94-45-90-70-20 தொடர்பு கொள்ளுங்கள். விண்ணப்பங்களுக்கு மின்னஞ்சல் முகவரி agn.chn1@gmail.com. வர்த்தகம் பெருக ஆகாஷ்வாணியோடு இணைக.
1: மதுரை FM 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் FM 100.9
2: FM ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
3: ஆகாஷ்வாணி மதுரை எஃப்எம் 103.3, ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9. நேயர்களே, பாட்டு இது ஹிட் நிகழ்ச்சி 7:35 தொடங்கும். அதற்கு முன்பாக இந்த ஒரு 5 நிமிடம் நாம் கேட்க இருக்கின்றோம். ஜப்பானில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் 2026 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த அண்மை நிலவரம் டெல்லி அஞ்சலாக.
4: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
5: बीसवें एशियाई खेलों पर आज की अंतिम अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। और भारत के लिहाज से देखें अगर तो आज की स्पर्धाएं समाप्त हो चुकी हैं और बहुत शानदार दिन रहा है आज, बल्कि अब तक इनके इन एशियाई खेलों में आज का सबसे बढ़िया दिन कहा जाएगा, क्योंकि 6 स्वर्ण पदक आए हैं, 2 रजत पदक आए हैं, 2 कांस्य पदक आए हैं। एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आया है, महिला हॉकी का 1 स्वर्ण पदक, और इसके साथ ही कॉन्टिनेंटल चैम्पियन होने के नाते भारत की टीम जो है, महिलाओं की टीम, उसको लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में सीधे प्रवेश मिल गया है। बहुत बड़ी बात है। अब 2 साल होगा भारतीय टीम को तैयारियां करने के लिए मिलेगा, नए कॉम्बिनेशन आजमाने के लिए मिलेगा, यानी पूरी तरह चाक चौबस्त होकर टीम जा सकती है। ज़बरदस्त मैच था, भारत ने बिल्कुल अलग रणनीति के साथ खेला। इसके पहले भारत ने गोलों की झड़ी लगा रखी थी पूल के मैचों में, लेकिन यहाँ पर आज चीन की ज़बरदस्त टीम सामने थी। चीन की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन लड़कियों ने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको उन्होंने जारी रखा। चीन को बिल्कुल उन्होंने कहना चाहिए आड़े हाथों लिया। अच्छी बात यह रही कि पहले क्वार्टर में ही भारत को मौका मिला, और क्या शानदार, शायद टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल कहा जाएगा, लाल रंग सियामी ने किया। रिवर्स स्टिक से बहुत शानदार रिवर्स शॉट लगाया था उन्होंने, थोड़ा उठता हुआ बिल्कुल गोलकीपर को चकमा देता हुआ पहुंच गया था। उसके बाद से भारत ने अपनी रणनीति यह बदली कि पूरी तरह डिफेंस पर आ गए। इस एक गोल की लीड को, हॉकी में बहुत गोल होते हैं हम सब जानते हैं, उसको उन्होंने लगभग 3.5 क्वार्टर तक बनाए रखा। चीन ने बहुत आक्रमण किए, लेकिन आखिरकार वो फेल होता रहा, क्योंकि भारतीय लड़कियों का डिफेंस बहुत मजबूत था। सुशीला ने बहुत अच्छा किया, नवनीत कौर ने बहुत शानदार किया। कुल मिलाकर स्थिति ये आ गई कि आखिरी के करीब 4 मिनट तो गोलकीपर को ही हटा दिया गया, यानी 11 के 11 खिलाड़ी आक्रमण करेंगे, चीन के लिए गोल आए, तब भी भारतीयों ने आपा नहीं खोया, सिर्फ एक मूव बनाया, उनको समय बिताना था वो 3.5 मिनट। शानदार मैच रहा हॉकी का। 1 स्वर्ण पदक, अब देखना है कल भारत की टीम भी पुरुषों की, वो भी 1 स्वर्ण पदक लेकर आए तो खुशी दुगनी हो जाएगी, पदकों की जोड़ी बन जाएगी। इसके पहले आज बहुत शानदार दिन बॉक्सिंग में रहा, लवलीना बोरगोहेन ने 1 स्वर्ण पदक जीता, एशियन गेम्स का अपना ये पहला 1 स्वर्ण पदक उनके लिए था, मणिपुर की हैं। शानदार तरीके से उन्होंने आज अपनी फाइट लड़ी, बाउट लड़ी, 5-0, तीनों राउंड में लगातार उन्होंने प्रभुत्व बनाए रखा। दूसरा परवीन हुडा का 1 स्वर्ण पदक था, थोड़ा मुश्किल से आया, 3-2 का स्प्लिट डिसीजन था, लेकिन परवीन जैसी आक्रामक वो खेलती हैं बिल्कुल वैसी रही, ताइपे की नीन चिन येन के विरुद्ध थी, और उन्होंने भी 2वां 1 स्वर्ण पदक दिलाया। तीसरी बाउट में अंकुश पंघाल थे, हरियाणा से ही आते हैं, सेना में नौकरी करते हैं। अंकुश पंघाल ने अपने ऊपर काबू रखा, अपने स्टाइल को बिल्कुल नहीं चेंज किया, वो साउथ पा हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मुक्के बरसाए और उन्होंने

0: भी इस बाउट को जीतकर भारत के लिए बॉक्सिंग में आज का तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया 80 किलोग्राम में। आर्चरी में भारत की महिला टीम ने अंकिता भगत, कुमकुम महोद और कीर्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक पाया और सिल्वर आया मिश्रित में धीरज देवोमरा और कुमकुम महोद के साथ। और इसके अलावा धीरज, यशदीप भागे और नीरज चौहान की जोड़ी ने ईरान को परास्त करके पहले प्रवेश किया फाइनल में। वहां पर दक्षिण कोरिया, जो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, उससे वो परास्त हुए लेकिन रजत पदक पाया। कुश्ती में बहुत खास दिन रहा, इसलिए दीपांशी की पहले बात कर लें। बहुत नई लड़की है, बिल्कुल उभरती हुई लड़की है। 50 किलोग्राम भार में वो पहले अपनी बाउट जापान की सुशाई यूई से हार गई, लेकिन उसके बाद उनको रिपेचेस में मौका मिला, उन्होंने अपनी बाउट जीती, ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला किया, लेकिन कजाक की जिनेब बायानोवा से परास्त हुई। उसके बाद 65 किलोग्राम वर्ग में अकल्पनीय चीज़ करके दिखाई सुजीत कलकल ने। 2-9 से पीछे होने के बाद भी, यानी बिल्कुल हर एक को लगने लगा था ये बाउट तो गई, ये कुश्ती तो सुजीत के हाथ से गई और स्वर्ण पदक तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन उन्होंने क्या वापसी की है। कहते हैं ना, एकदम जब बिल्कुल आप एकदम कोने पर पहुंच गए हैं, गिरने वाले हैं, कगार पे आ गए हार के, वहां से उन्होंने वापसी की, लगातार 8 अंक कमाए और सुजीत कलकल का ये स्वर्ण पदक बहुत बहुत दिनों तक बहुत याद रहेगा। इसके अलावा और भी भारत की ओर से बहुत अच्छी कुछ प्रदर्शन रहे हैं। सेलिंग में नेत्रा कुमानन ने डिंगी में, उन्होंने जो पहले कहलाती थी लेज़र रेस कहाया करती थी ICLA की स्पर्धा, उसमें उन्होंने कांस्य पदक पाया। सिपक टोकरा में भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिन रहा है भारत के लिए। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कल के, कल क्रिकेट का मैच है, फाइनल मैच है पाकिस्तान के विरुद्ध। हॉकी में मलेशिया के विरुद्ध पुरुष की टीम उतरेगी। आर्चरी में कुमकुम महोद, धीरज देव बुमराह और नीरज चौहान कोशिश करेंगे स्वर्ण पदक पाने की। कुश्ती में 5 पहलवान हैं, सागर जगलान, अंतिम पंघाल, अमन, दीपक पुनिया, मनीषा। इसके अलावा गोल्फ में प्रणवी क्या करती हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं भारत के लिए। R7, Rugby 7, ताइक्वांडो और वॉलीबॉल में भी होंगे। भारतीय टीम बहुत अच्छे स्थान पर आ गई है, 5वें स्थान पर आ गई है। 16 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 35 कांस्य पदकों के साथ 76 पदक लेकर 5वें स्थान पर है। तो अब आपको ये बताते हुए कि हम कल फिर हाजिर होंगे 9:30 बजे अपने इस अपडेट की श्रृंखला के साथ। अब अनुपम पाठक यानी मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: இதுவரை கேட்டோம் ஜப்பானில் நடைபெறும் 2026 20வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் குறித்த அண்மை நிலவரம். டெல்லி அஞ்சலாக ஆகாஷ்வாணி.

0: நேரம் இரவு 9:59 47 நொடிகள். ஆகாஷ்வாணி மதுரை மற்றும் ராமேஸ்வரம் பண்பலையில் நேர்களை இன்று இரவு 10:20 பட்டுச்சிறகு நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றது. அதற்கு முன்பாக இந்த 1:20 நாம் கேட்க இருக்கின்றோம், ஜப்பானில் நடைபெறும் 2026 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தினசரி நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாக.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா.
2: Welcome to our daily highlights from the 20th Asian Games in IT Nagoya. I am Megha. October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a 4-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
3: Mahila hockey ke final mein aaj Bharat ki ladkiyon ne ek bahut bada karnama kar dikhaya aur unke liye taaliyan hi taaliyan jitni bhi bajaiye kam hain. Cheen ko 1-0 se hara kar swarna padak apne naam kiya aur Los Angeles Olympic mein pratibhagita pakki kar li continental champion hone ke nate. Bhartiya hockey premiyon ke liye ek bahut tanav bhara khoon jamane wala romanch se bhara hua match tha ye. Pool level pe goal daagne wali ladkiyon ne mazboot team ke virudh रणनीति बिल्कुल बदल दी. थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही. फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया. डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर. आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट. भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही. गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे. पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा. खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए. फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना. पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया. उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक. किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर. सविता पूनिया ने अकल पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया. हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे. डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण. चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी. समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश लगी थी. अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर. लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया. बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा. स्वर्ण पदक भारत को. अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले. इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है. अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए. चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में.
2: नेक्स्ट ऑन टू द

0: wrestling mat. And this was a day when India had plenty at stake across four weight categories. And one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
1: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत, रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़साई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चलें, सुजीत साल 2026 में अब तक अजय हैं। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की ज़ेने बयानोवा ने चित करके यानी फॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडित काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत, रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
0: Now to the boxing ring. 3 Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all 3 emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
1: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की। अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगझाऊ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नबखोर खादिमोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
0: next to the archery range. And another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
1: Nagoya mein Bharatiya teerandazon ne aaj nishane par aisa teer chalaya ki padakon se jholi bhar gayi. Ek hi din mein Bharat ne teerandazi mein ek swarn aur do rajat padak apne naam kiye. Mahila rekord

0: टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती दो सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया के तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's squadron teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: Sepak Takraw में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगु स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा, सौरव खाइबाम, रामकुमार शर्मा, बॉबी कुमार और यक्ष युमनाम, और एक्सटेंडेड खिलाड़ी थे अरुण राजू और लोखोन सिंह इलांगबांग। मुकाबला भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों ही सेट्स में कड़ी टक्कर उन्होंने दी। पहले में तो 9-9 की बराबरी पर ले आए थे, लेकिन उसके बाद जापान ने अंतिम समय में बढ़त बना ली और दूसरे में तो जापान ने शुरू से ही लीड ले ली थी। एक समय 12-8 से जापान आगे हो गया था, लेकिन भारतीयों ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया और स्कोर 12-13 पर ला दिया, यानी अंतर सिर्फ 1 अंक का। मुकाबला कहीं भी जा सकता था, लेकिन निर्णायक मौकों पर उनसे हुई चूक और जापान ने मौकों का फायदा उठाया, 15-13 से सेट और मैच जीत लिया। भारत ग्रुप में अपराजय रहकर सेमीफाइनल में पहुंचा था और ये भारत का क्वाड्रेंट स्पर्धा में पहला पदक है और एशियन गेम्स के इतिहास में सेपक टाकरा में कुल मिलाकर 3रा पदक। सेपक टाकरा टीम को बहुत साधुवाद।
1: We move on to the golf course, where the competition is heading towards its business end and the Indian contingent had plenty to play for in the round 3. Sakshi Mandwal has the details.
3: Pranavi Urs fired a 4-under-66 to take a 9-stroke lead heading into the final round of the women's individual golf event. India are also second in the team standings behind China, with Aditi Ashok and Deeksha Dagar still in contention for a team medal. In men's team golf event, Team India finished 6th after round 3 with a combined score of 11-under-par-409, carding 136 in the third round. Saptak Talwar continues to lead individual men's efforts, staying in the top tier after solid opening rounds.
1: It was a busy day for the Indian cyclist at the ISU Velodrome. Action across three events. In the men's Keirin, Ronaldo Singh crashed out in the repechages after taking six in the heat, while David Beckham mounted a gritty run through the rounds to make the semi-finals, ultimately finishing sixth in Final B to secure 12.